डगी गई सके तमन गंग मंजगा को बतंग साई तमन गंग ने बा कोस कलिंग का सरता नीतू ने कबरस तौ तके बेबरतने ताय चगे तवे जलेप स्टूडियो तो उस इतनी गई मुचित ने बबरतने गोई मन एंग सरता ने गोई आगो के रीति में यहां आगो तो मिगेर वालू वाले तक वाले को ए क्वारी में थे एमरोइड लालियत अस्मा रोए तब करते सुगरु मुगुंगियत चे मग सगीशे कैंडिडियासिस प्रोस्टेट सुए तकला के जान मजते इमगे डॉक्टर तोवेत को चिप कर जाते ने ना थे एंग कन्या से थे ने गो नय सा एंग के निचे के जान आगो की गए रिसर्च आगो तिने चम जिने थे की गो को नय सा ने दते को मेंबर थे द हैपल सोसाइटी ऑफ केन्या रुते जी एंग्ले थे उपस्थित कर जो स्टेज चेप कोसा होटल अपस्टेज जुमापेली आगो का सीता मुद पी मनी आगो नय परिचय से मेटंग नंबर 0703 556 898 तो इतने का मुझे बबोरतने गोई मन एंक सरतने गोई आगो की रीति में यहां आगो तो मिगेर वाले को इक्वारी में थे इमरोइडे लालियत अस्मा रोएताप करतीक सुगरु मुगुंग्याते चेमग सिकिशे कैंडिडियासिस प्रोस्टेट सुयतकला के जांग मत टाइम के डॉक्टर तुवेत को चेप कर जाते ने ना तो एंक न्योई सेत ने की को न्योई सा के निशे के जांग आगो की को यायर साचे आगो तिने चम जीनेत को न्योई सा इने दते को में बैत इन हापल सोसाइटी ऑफ केन्या रुते जी एंग्लिते इन उपसित कर जो स्टेज चेप को सा होटल अपस्टार्स जुमापिली आवे का सिता मुद पी मनी आगो न्योई परिचिसी में तक नंबर 0703 556 898 0703 556 898 ये बरसते वक्त बता लेता तक्सा कोल्जे जे बोले आगो बाची ले सिए थे आगा गन्या सिद न बा कोन्या के नेगिया ये जमता तो तरीके तो तमाम सुमगरा तब तो सभी कोंगे ते साई थे अगेंगे ने बा असबुइम केर बनी केर चेगे आगे मुनाओग एंगे ची नगागी न्योरिन कुतिंदाए काई मुच्छेत एंचे जांग इबरसी मेत को नंबर 0724 109 214 0724 109 214 otagatin togolem